0: कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: मध्यपश्चिम जांग यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाइफ।
1: मध्य पश्चिम चाँग च्याक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वस्थ श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वस्थ श्री
1: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन

Bionet को buy one get one free offer मा तीन महीना को 125 Mbps इंटरनेट और 2700 में खरीद कर दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आपको लागी एक महीना free इंटरनेट Bionet अब सब वही कनेक्टेड

राम राम सन्झेक 5 बजे थारुभाषक मध्यपश्चिम खबरमा सारिक राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसी युवाहको नक्ला सचेत अनुशासित ओ जिम्मेवार बनाइसकलसे सवारी दुर्घटनामा उल्लेखीय कमी आइसकिन बतवारखल दाङकला महिमा आज आयोजित प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी हन सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यसी लुम्बिनी प्रदेशमा सक्रियसे धेर मोटरसाइकल दुर्घटना हुना कर्लाको उहेमन विशेष गरिकन 16-30 वर्ष उमेर समूहको युवाको संलग्नता तथा क्षति बढ़ी देखिलक बतवारखल उहाँसे यहाँ प्रदेशको भारी चुनौती चिन्ताको विषयको रूपमा उल्लेख गरिरहल। मुख्यमन्त्री आचार्यसे विद्यालय तहसे जो सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्न आवश्यकता औल्याखल। संघ प्रदेश ओ स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकारी गरिकन यी वाहन सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिती अनुशासित ओ जिम्मेवार बन्न पर्ना उहाँको कार्यबाटिन। प्रदेश सरकारसे सड़क सुरक्षा ओ दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक साझेदारी गर्न तयार लगे उहाँ बतवारखल। दाङ बाँके कपिलवस्तु रूपन्देहीमा सवारी दुर्घटना बढ़ी हुना कर्लक उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यसे तीव्र गतिमा सवारी चलिना प्रवृत्ति ओ लागू औषधको प्रयोग दुर्घटनाको प्रमुख कारण रलक बटवारखल। पुरान सवारी साधन गुणस्तरहीन सड़क ओ चालकको लापरवाहीको कारण फेर दुर्घटना बहरतिरलक उल्लेख गर्दै उहाँसे प्राविधिक रूपमा उपयुक्त गुणस्तरीय सड़क निर्माणमा ध्यान दिए पर्न बटवारखल। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसे दाङको गढ़वा गाउँपालिकाको तत्कालीन अध्यक्ष सहज राम अहिर सहित 5 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिराखल। आर्थिक वर्ष 2076-77 राप्ती लड्या क्षेत्रसे ढुङ्गा बालुवा ओ गिट्टी उत्खननको ठेक्कामा 1,41,50,000 रूपियाँ राजस्व चुहट गर्लक आरोपमा आयोगसे आज मुद्दा दायर गर्लक हो। आयोगसे अनुसन्धानको अनुसार गाउँपालिकाका पदाधिकारी ओ कर्मचारी हुनक सगुन कन्स्ट्रक्सनका मिलोमतोमा ठेक्का सम्झौता निकैकन रसिद खटलक काटकन अनियमित ढंगसे राजस्व हिनामिना करल रह प्रचलित कानून ओ कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको हिस्सा समेत रहना राजस्वमा स्वेच्छाकारी ढंगसे छूट देलक ओ बैंक जमानत बापतका 1,41,50,000 रूपियाँ गैर कानूनी रूपमा मिनाकैकन राज्य कोषन हानि पुगिलक अख्तियारको ठहरबा। मुद्दा दायर गरिलकमा तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगी राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी सगुन कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का ओ प्रतिनिधि विकास पुन रहलबाट अख्तियार से उनको नक्से जनही 1,41,50,000 रूपियाँ दिगो असूल कैकन जरिवाना ओ कैद सजायका माग दाबी कैराखल। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा काल 1,000 से धिउर सेवाग्राही से स्वास्थ्य सेवा लिहलबाट। प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी निशान भट्टराईको अनुसार एक दिन जो 1,285 जनसे स्वास्थ्य सेवा लिएलक हुन्छ। यी संख्या प्रतिष्ठान स्थापना से जो यहाँ एक दिन जो यी सेवा लेना बेरम्या मध्ये सक्रियसे धिउर हुइलक जनागिल्बा। प्रतिष्ठानका अनुसार 1,180 जनसे बहिरंग ओपीडी सेवा लिहलबाट कलसे 51 जनसे आकस्मिक सेवा मार्फत उपचार कराखल। वस्तगत 54 जन लौ बेरम्य अस्पतालमा भर्ना होरल। आकस्मिक सेवा से उपचार करिना मध्ये 26 जन पुरूष ओ 25 जन महिला रहलबाट। वस्तगत ओपीडीमा 435 पुरूष ओ 745 महिला उपचारका लागि रलह। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत 446 जनासे सेवा लेलक प्रतिष्ठान जना राखल। प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर सुरेश रसाईलीसे बिरम्याहुकनक बढ़दो 400 प्रतिष्ठान प्रतिको जनविश्वास भर्ती गैलक संकेत गर्लक बटुवा राखल। विशेषज्ञ चिकित्सक दक्ष स्वास्थ्य कर्मी आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण तथा सेवा विस्तारका कारण दाङ सहित छिमेकी जिल्लासे फे भारी संख्यामा बिराम्या उपचारका लागि प्रतिष्ठान ऐना कर्लक उहाँको कहिबाटिन। बिरम्या कच्चा बरहलसे फे चिकित्सक नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी से निरन्तर सेवा भए प्रभाव कर्तिरलको सहज प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई आवश्यक व्यवस्थापन हुन थप सुदृढ बनिन प्रतिष्ठानसे जना राखल। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गढ़वा 3 मा कार्यरत करार मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हुक्र आन्दोलित हुइलबाट धरना बेस्कन दवाब देलखुइट। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटीभीटी अन्तर्गत कार्यरत करार मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हुकनक्से आफ्नो माग तत्काल सम्बोधन गर दवाब देती आन्दोलन
कर लगलग हुई या कर प्रभाव से राप्ती प्राविधिक अस्पताल का कर्मचारी हुक्रफे आंदोलित हुईलग हुई करार मासिक तथा दैनिक जलाधारी श्रमिक केन्द्रीय संघर्ष समिति से सार्वजनिक करलग आंदोलन कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर का प्रदेश कार्यालय शिक्षालय तालीम केन्द्र तथा अन्य शाखा कार्यालय में आंदोलन शुरू कर गिलक हो। समिति के अनुसार कर्मचारी हुकन का हक हित सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा का सुनिश्चितता का परिषद व्यवस्थापन समक्ष नौ बुधे मागपत्र पेश कर गिल रह 2077 से विभिन्न चरण में आंदोलन मागपत्र पेश तथा प्रतिवेदन तैयार हुई लसफे व्यवस्थापन पक्ष से हालसम कौनो ठोस निर्णय निकरलक हो से आंदोलन में उतरलक बाध्य हुईलक जना राखल। समिति से साउन 11 गते दिलक 24 घंटे अल्टीमेटम का अवधि ओराइवेद समेत माग संबोधन का कौनो सकारात्मक पहल निहुलक हो से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर गिलक उल्लेख राखल। साउन 18 गते से प्रशासनिक तथा आर्थिक शाखा का काम पूर्ण रूप में बंद करती संघर्ष शुरू कर गिलक हो। साउन 22 गते से शैक्षिक गतिविधि और परीक्षा संबंधी कामकाज समेत ठप्प पर्न कार्यक्रम घोषणा कर राखल। यही से अगाड़ी राप्ती प्राविधिक शिक्षालय करार संघर्ष संयोजक सुशील पौड़ शिक्षालय प्रमुख परशुराम खनाल आंदोलन संबंधी अपील तथा ज्ञापन पत्र हस्तांतरण करल रह। हुईठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अतरह काल संज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सेक्नी भाटी अखसक खबर मसी समाचार कक्ष कसकको संग्रह संग मैं शालिक राम चौधरी विदाई टू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: কি করিম বাচ্চি?
1: এই কপ্তা দেখি এ দাঁত দেখে কো দেখেছ? ফেরি ছোরা ছোরি কো দাঁত পনি কিরালে খায়ের ফাল্নে ভয়েকো ছ। অব এসকো উপচার কো লাগি কা জানে হলা?
2: ই সবাই সমস্যা সমাধান কা লাগি অব বিএনবি ডেন্টাল ক্লিনিক মা ডাক্তার আয়ুষ গৌতম সিনিয়র ডেন্টাল সার্জন দ্বারা সেবা দিদি আই রয়েকো সহর্ষ জানকারী গরাউদছৌ।
1: ডাক্তার দ্বারা দিনে সেবাহরু
3: দাঁত সফা গর্নে তথা নিশুল্ক চেক যাঁচ কো সুবিধা,
1: বাঙ্গা টিঙ্গা দাঁত মিলাউনে,
3: শল্যক্রিয়া গরের দাঁত নিকাল্নে,
1: খালি ঠাউমা দাঁত ভর্নে,
3: দুখেকো দাঁতলাই নদুখাই জ্বরেবাট নিকালিনে,
1: মুখমা ঘাউ খটির আউনে, গিজাবাট রগত আউনে, শ্বাস গনাউনে, দাঁত তথা গিজা সম্বন্ধী সম্পূর্ণ সমস্যা কো সফল উপচার কো লাগি হামিলাই সমঝনোস।
3: সম্পর্ক বিএনবি ডেন্টাল ক্লিনিক, ঘোরাহী 15 হসপিটাল রোড, নিমাহল, কুমারী ব্যাংক অগাড়ি, ঘোরাহী দান। সম্পর্ক ফোন নম্বর 082-595-350 র সম্পর্ক মোবাইল নম্বর 98-578-43-123।
4: घर घर अनि गृहिणीको साथ हुलासले बनाउँदैछ परिवार एक साथ।
5: बुबालाई हुलास आटाको रोटीको स्वाद होस् वा आमालाई बासमती चामलको भात, खानामा रहर दालको साथ हुन्छन् सबै खाएर गदगद हुलासको पापड।
4: हुलास फुड्सका उत्पादहरू हुलास आटा, हुलास बासमती राइस, जिरा मसिनो राइस,
5: हुलासको कुरुम कुरुम चिउरा, हुलासको इडली राइस,
4: हुलासले बनाउँदैछ परिवार एक साथ।
6: सीता के भो तिमलाई घुम्चेर बसेछौ? के हुनु नि, बिहे भएको छ 6 वर्ष भइसक्यो, बच्चा बच्चीको लागि कतै ठाउँ देखायो कतै ठाउँ, तर केही सिप चलिन, अब त आशै मरिसक्यो।
7: के कुरा गर्छ निले, हाम्रै घोराईमा शिशु क्लिनिक अफ फर्टिलिटी सञ्चालनमा आछ त, त्यहाँ त निसन्तानपन सम्बन्धी समस्याको सबै उपचार हुन्छ, त्यसै आश्चर्य हुन्छ, कति लामो समयदेखि बच्चा बच्ची नभएको त्यहाँ गएर भइरहेछ, त्यही भएर ढुक्क भएर त्यही जाऊ।
6: ए ठिकै छ, म जानु त धेरै अब तिमीले भनिहाल्यौ, त्यही पनि अब शिशु क्लिनिक नै जान्छु।
8: शिशु फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टर चितवनको शाखा अब घोराहेको बिपि चोकबाट, सम्पूर्ण निसन्तान उपचार अब फर्टिलिटी स्पेशलिस्टको टिमबाट सबै समस्याको समाधान गरिन्छ। समस्यालाई लुकाएर होइन, उपचार गरी सन्तान प्राप्तिको तपाईँको सपना अब पूरा हुन्छ। आज आफ्नो नाम दर्ता गरी विशेषज्ञ सेवा परामर्श लिनुहोस्।
9: नोट, पहिलो परामर्श निशुल्क दिइनेछ, समयमै नाम दर्ता गराई यो सुविधाको लाभ लिनुहोस्।
8: शिशु क्लिनिक फर्टिलिटी बिपिचो खोर हैदान, सड़क विभागको अगाडि एड्रेस बैंक भएको भवनमा, सम्पर्क मोबाइल 98-478-23-572।
10: राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना।
11: स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5 औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल ग्रीनविच विश्वविद्यालय लन्डन, कलेज रिडर्स नेपालद्वारा सम्मानित र नेपाल एजुकेशन अवार्ड जापान, अस्ट्रेलिया तथा यूएईद्वारा पुरस्कृत लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट यस कलेजमा बीबीए, बीसीए, बीई कम्प्यूटर र बीई सिभिल कार्यक्रममा नयाँ भर्ना खुलेकाले पढ्न इच्छुक विद्यार्थीले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
10: प्रवेश परीक्षा 24 गते, सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ,
11: फोन नम्बर 082-562-601, 98-578-35-990, 98-578-31-684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र 18 महिने अमिन कार्यक्रममा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला।
12: के तपाईँलाई पायल फुसफुसा फुसा भएको छ? दिसा गर्दा रगत आउने, पोल्ने, दुख्ने, मासुको डल्ला बाहिर आउने, पी बग्ने, गुद्दाद्वारमा मासुको डल्ला, खटिरा आउने आदि समस्याहरू भएका छन्? यदि बारम्बार औषधि गर्दा र अपरेसन गर्दा पनि रोग निको नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने बिना अपरेसन आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा सफल उपचारको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
13: हजुर, बुटोल अमर पथ हाट बजार लाइनमा रहेको, विगत 50 वर्षदेखि तपाईँहरूको माझमा सेवा गर्दै आइरहेको यस भट्टराई आयुर्वेदिक औषधालयलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्।
14: सम्पर्क भट्टराई आयुर्वेदिक औषधालय, बुटोल अमरपथ हाट बजार लाइन, डाक्टर गणेश भट्टराई, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-471-93-944, 98-471-93-944।

0: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बंद जीव दुखे आदि सबै का लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा
1: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-585-210 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि नीरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ
2: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि
3: वरिष्ठ हाट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा
4: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
3: हात खुट्टा भाँचिएको हात खुट्टा झमझमाउने ढाड कम्मर दुख्ने हाट जोड्ने सम्बन्धी अपरेसन सेवा
5: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू
6: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेसन सेवा
8: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा
9: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
10: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामी को चेक जाँच तथा उपचार सेवा
11: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा
12: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
2: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 082-585-218